0: 6.9 इंच को शानदार डिस्प्ले, AI पावर्ड कैमरा, 2 वर्ष को वारंटी सहित Redmi A7 मा 5200 mAh तथा Redmi A7 Pro मा 6000 mAh पावरफुल बैटरी को साथ थप अत्याधुनिक विशेषताहरूले तपाईको मन जित्छ बारम्बार।
1: सबैको मन छुने
2: रेडियो भेरी FM।

0: तो छैन यार।
1: शहर में भीड़ सब मानसे अकेला, टेंशन गर्मी ठेलम खेला, हर कोई जिंदगी से धकेला, सानो बात मा ठूलो समेला। ये इंसानियत सबका मरेला, बूढ़े जवानी के पीछे पड़ेला, ठगी चोरी दिमाग चढ़ेला। पैसा बहुत सा बरकत है ना, दो घड़ी को पनी फुर्सत है ना, पैसा छ सब कुछ ठीक था, समुन्द्र किनारे पानी ठीक था।

0: सुनने रेडियो भेरी एफएम
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक 3 बजे को छ
2: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी

0: प्रदान गर्ने जानकारी गराउँदछौ। मानिकेज मंगलगढ़ी सुर्खेत सम्पर्क फोन नम्बर 083-520-0045।
1: रेडियो भेरी एफएम

0: रेडियो भेरी एफएम 98.6 मेगाहर्ट्ज
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक 5 बजेको छ
2: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी